0: Elambu FM 89.6 MHz.
1: अब रङ फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथ नला विश्वासी चमक बसुगो परमेश्वर टुटप ताबा कादेदा तयार लाबन मुसुला जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुला स्पार्क माइ फेथ तथा नला विश्वासी चमक बसुगो अङ्क 65 रङ निदा स्वागत मुला नबियोग तामाङ रङ गति मध्ये तिगाइसे हाल सालै नदा रङला विश्वासनीयता मुक्तिला कथा कदे जुसुगा मुला रङ कदे नच्छ लानन अध्यारो परिस्थिति कदेला सामना लसुबा मुबा जहाँ बेनन ताम निराशाजनक म्रामुला प्रत्येक अवस्थाले परमेश्वर से आवश्यक आश्चर्य कर्म कदे लसुजे जुन से लामा रङ रङला परिस्थिति फेरि दासुजी रङ कदी मध्ये हालै दत्ते निराशला दुईला सामना लस्यु मुला रङ कदे दत्ते दोना एन परमेश्वरला यासे रङला लुइरी फन्न गई थेन्दे रङ कदे जुन निराशाजनक अवस्थिरी मुस्युला थेग्या मुक्त तागै बिसी ब्रान्जीब मुला भजन संग्रह 34 अध्याय 18 चूर्ण तिङ ताब गदे बेनला ङम परमप्रभु मुस्युला देन निराशा ताब गदेदा रोसे बचाव लस्यु मुला रङ्गदी मध्ये जो दत्ते संघर्ष लस्युबा मुला परमेश्वरजे रङ्ग देदा बेनन प्रार्थना देन न्यानबन मुसुला परमेश्वरजे रङ्ग देदा खासला अरे परमेश्वरजे रङ्गला ङाम मुसुला थेन्दे परमेश्वरला योजना रङ्ग देदा रङ्गला निराशाजनक अवस्था ग्याम छुटकारा पिन्सुबा हिन्बा रोमी 5 अध्याय 3 हेन्जे 5 चुदे जे आहिन दुखरी नोन याङ ताङबा मुला तिग्द विषम याङसे दुख नाजी विषम अझन याङ विश्वासरी पाको मि दोला दुख नखाम्बा शक्ति से याङदा पाको मि सोला याङ पाको मि तमाहेन्से याङदा आस खमुला याङसे लामा चु आससे याङदा दुख नोनबा आल तिग्द विषम याङदा परमेश्वर से रङला आत्मा पिन्बा मुला ओछे थेनोन आत्मा से याङला सेम्री परमेश्वरला माया थनबरी पिन्बा मुला परमेश्वरला बारेरी याकर्गी साचिन अचम्मला देन अद्भुत ताम चुहिन्बा कि परमेश्वर याङला समस्या देग्याम मुक्ता लाभ जेखेन हमला आरे तसै भविष्यरी याङदा लानन प्रभावकारी सेवाला लागि तयार लरिबा लाबरी याङसे भोक्तिबा थे संघर्ष कदे देन प्रयोग लाबरी हम्बा मुस्युला एफिसी 2 अध्याय 10 तिग्द विषम याङसे जब गे लगाइ बिसे परमेश्वर से याङदा यीशु ख्रिस्ट याम छार मि शोभा हिन्दा थेसे नङबा अनुसार ब्रगै बिसिन परमेश्वर से याङदा नक्सा हेन्सेन शोभा मुबा तयारी हाइमा दमन रमाइलो आतामुला यद्यपि रङसे भोग्दिबा पीडा ग्याम परमेश्वर दा लिच्छा रङदा छुटकारा पिन्सुला तेन्दे तिरम थे छुटकारा लिच्छा रङ भविष्य थेनोन प्रकारला कठिनाइदा पार लब्रे रङला क्षमतरे लानन बाङमा तुला चुला अतिरिक्त रङसे भोक्तिबा रङमन कठिनाई कदे अनुभव लजिबा सन्दोदा रो लबरी रङ लानन सुजित तस्युला सायद रङसे स्वास्थ्य समस्या कदे देन संघर्ष लस्युबा मुला देन परमेश्वरसे चमत्कार पुराण रूपरे रङदा फान्न लस्युजी दारेम रङदेन स्यान्दोदा फन्ना लावा विश्वास मुला सायद रङसे आर्थिक संघर्ष क्याम गुजरब तबा मुवा जब रङसे परमेश्वरसे रङद चुग्याम छुटकारा पिन्छुबा अनुभव लस्युला रङ टाङ्गला आवश्यकता सन्दर्भरी परमेश्वरदा माइबका देदा समृद्ध सोबरी प्रोत्साहित लवरी हमला याकुब 1 अध्याय 2-4 नाला जो जो आले आँगा गदे एनी गदे थोरी थरी थरीला आपत दिपत खामा चु ताम दोबा ताम हिन्ना बिसी मनगो तिग्दा विषम चुरङबा दुख नामा हेन्से एनी गदेला विश्वास क्याम अझ एनी गदे से ग्रेन ग्रेन दुख नखामला बिब ताम एनी गदे दा खानोन मुला थेत बासेलमा एनी गदे थोरी खाबा जम्मन दुख पुराण नागो चुरङ लसी विषम एनी गदे जत्तोन दुख तसै नोन नखाम्बा पाको मितोला जब याङ लुइरी कठिनाई कदेला सामना लामुला चुसे परमेश्वर फिरेला याङला विश्वासला परीक्षा किन्मुला निराशला चु दुइरी याङ रो फेरि भरोसा लाबरे लोपन निभा याङ परमेश्वर से याङदा फेरङमा मेरी गप्पा अनुमति तिनला जो सन्दोदा लानन्देन तरिकासी रो लाबरे हामला तामुला कठिनाई कदे ग्याम याङसी अनुभव लाबरे हामला आनन्द ओत्ते बेला याङसी भोक्तिबा पीडाला कारण से आइन्बा तसै चु भविष्यरी परमेश्वर से याङला लागि थान्बा छुटकाराला प्रतिक्रिया री याङला भरोसा हान्सी हाला आमेन। रङ्गिला जीवनले परमेश्वर से लानन लानन आशिष पिन्छु गई आमेन। प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यान्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङ्गिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम गन्दा सम्पर्क लसि
2: टाइम चेक इट्स 7 PM
3: अहिले साँझको 7 बजेको छ।